के प्रभु साथ हर्षभरी जय माता पिता सतमीज न भाई मनुआ नाम तेरे संग सहाय जय महाप्यान दूध जमदल केवल नाम संग तेरे रह चल जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन मह उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जब तो है सुखिया लाख करोरी बंद नाम पर है हर का नाम जब तो निस्तर है अनक माया रंग तिख नाम बजाव है हर का नाम जब तो एकाव है जे मार्ग ये जाते केला तय हर नाम संगोद सहेला ऐसा नाम मन सदा ते आई है नानक गुरु परम गत पाई है छूट नहीं कोट लख बाही नाम जब तय पार पर आई अनक बिघन जाए आये सिंगारे हर का नाम तत्काल उधारे अनक जौन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तोवै हर का नाम कोट पाव खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साध के संग जे मार के गिन जाए न कोसा हर का नाम उहा संग तोसा जे पैंडे मह अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहाँ पंथ तिरको नहा सियानु हर का नाम तनाल पिछानु जय महा भ्यान तब्द वो काम तय हर के नाम की तुम्हें ऊपर जाम जहाँ त्रिखा मन तुझे आकर्ष है तय नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओर हर के नाम उदरे जन कोर हर जस करत संत दिन रात हर अवगत साध कुमार हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नौदान मन तन रंग रथे रंग एक है नानक जन कह बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग हर का नाम जन की विड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कहे नए वियोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर तन जन को आप प्रभु जीना हर हर जन कह ओठ सुतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाग नाम रस माते पाठ पहर जन हर हर जप है हर का भगत प्रकट नहीं छप है हर की भगत मुक्त भव कर नानक जन संकेत तर पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम संत दर दुख लथा नाम के में संत हृदय वस है संत प्रताप दुर्द सब नस है संत का संग वट पाकी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तोल कुछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहुत सस्तर बहुत सिमृति पेखे सर्व टोल पूज से नाही हर हरे नानक नाम अमोल सबदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शस्त्र सिमरत विज्ञान योग व्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग मन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान हो मैं बहु रचना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने में करे बहु पांती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रेम फिरे चिर जीवे महावदास तपीसर जीवे अगन मैं होमत प्राण कनक असव है वरपूम दान न्यौली कर्म करे बहुवासन जैन मार्ग संयम असाधन निमख निमकर शरीर कटाव तो भी होमें मैल न जावे हर के नाम संसर्ग नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीरथ दे छुट गुरु गुमान न मन ते उठ सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू न बिखिया डरे जल तो होवे बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पथ बहुमूच बहु सियाणम जम का पौ व्यापे अनक जर कर तिस न त्रापे एक अनेक अगन नहीं बुझै कोट पाव दरगाह नहीं सिजै शूर से नाही ऊ प्याल मोह व्यापे माया जाल और करतु सगली जमडाना गोविंद भजन में तिल नहीं माना हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए
चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सात संग ये होमे शोरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानकता के बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान सत्संग जा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिए सब ते ऊंचा जा का मन होए सगल की रीना हर हर नाम दिन गड़ गड़ चीना मन अपने ते बुरा मिटाना फेके सगल से साजना सुख दुख जन समेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन को धन तेर हो ना हो निधावे को न तेरा था हो निमाने को प्रभु तेर हो मान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गल में जानो आपे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस तो तुम ते होए नानक अवरन जान सकोए सर्व धर्म में से धर्म हर को नाम जब निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मद मरे रिया सुगल सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत वाणी हर को जसन रसन बखानी सगल थान त्यो उत्तम थान नानक जे कट बसे हर नाम सलोक निर्गुण यार ए आनया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी याद चीज रख नानक निभी नार अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन निष्ठानी जिन तू सार सुभार सिगारिया गर्भ अग्न में जिने अभारिया बार बसता तुझे प्यारे दूर पर जो बन भोजन सुख सूर बिरद पया ऊपर साग सहन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसै सुत प्रहाद मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पन पाव के अमोला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साध बसा दीने हस पाव करने तर रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मुड़ांत व्यापे नानक काल ले प्रभापे आदंत जो राख नहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिध पावै तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगा मान तिसे पसारे मुग्ध जान सदा सदा यो पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौटी संग रचै सा शोर झूठ संग मचै जो शरणा सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तो होए गर्द पीत पसम संग होए अंधकूप में पसुत बिकराल नानक काल ले प्रभु दयाल करतूत पशु की मांस जात लोग पुचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मर माया शब्द नाही कज करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ समान अंतर अग्न बाहर तन स्वा कल पाथर कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रभाव नानक ते जन सहज समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लिहो और निभावै कहाँ बुझार्थ बुझे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा कहाँ विष्णु पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुर पंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो ऊहा उस गमन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरह संग सहाई सुहावे न चीज जो भराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अंध के माया रंग रसे डर कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूड़ बिकार महा लोभ त्रोह याहू जुगत बयाने कही जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकर तो पै अरदास यो पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूतर तारी तुम ते हुए सौभाग्यकारी तुमरी गद में तुम ही जानी
ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੋ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੈ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸਵਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਤ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੈ ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋੜ ਗਵਾਵੈ ਏਕ ਬੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੀ ਹਿਰਲੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਉਂ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਥਾਹੂ ਮਨ ਬੁਰਾ ਜੇ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਦੋਖ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਅਗੰਤ ਸਾ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ ਖਾਦ ਪੀਤ ਵਰਤੇ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਕਸ਼ਬਾ ਔਰ ਸਾਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ਪਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਤ ਸੇ ਆਗੇ ਰਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਮਾਥੇ ਉਸ ਤੇ ਜੋਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਅਨਕ ਪਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ਸਰ ਪਰ ਹੋਤ ਜਾਨ ਅਨੇਤ ਬਿਰਗ ਕਿਸ਼ਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਉਹ ਬਿਨਸੇ ਉਹ ਮਨ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋਤੀ ਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣ ਹਾਰ ਲਪਟ ਰਹੋ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾ ਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਹਿ ਲਾਈ ਮਿਥਿਆ ਧਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੁਭਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੇ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਚੁਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਗਰਾਲ ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਅਸਥੀ ਅਸਵਸਤਰਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਕ ਹਸਤਾ ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਆਪਸੂ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਿਥਿਆ ਸੁਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਮਿਥਿਆ ਹਰ ਪਰ ਦਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੁਤਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੈ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਸ ਵਿਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਏ ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਰਤੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰ ਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁਚਾ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ ਮੁਖ ਆਵਤ ਆ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਵੇਗ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰ ਧਾਮ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਕਰ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੀਜ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਗ ਨ ਕਾਹੂ ਪੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੋਂ ਪਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਉਨ ਚਰਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪੇ ਮਾਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਕਰਦ ਨਵੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿ ਸਭ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਜਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੰਦਰ ਤਲ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਵਸਣਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਿਆਰੀਏ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ ਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸ ਗਵੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਕਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਤਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇਵਲ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਬਦ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵਲਾਭੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੇ ਸਗਲ ਸਿਦਰ ਢਾਕੈ ਮਨ ਸਰਣੀ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਧਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇ
ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜਾ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵਸਥ ਉਸ ਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਹੂੰ ਨਹਾਂ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਤਨਹਾ, ਰਾਗ ਪ੍ਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬੰਤ ਬਣਾਈ, ਊਠ ਬਹਿ ਸਾ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ। ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਲਖੈ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਿਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾ ਸਾਹ ਚਿਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਜਾਤ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨਾਲ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਲ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਰ ਲਾਗੋ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂਰਤ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਜ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਓ ਰਾਜ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੇ ਜਪ ਸੋਏ। ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਸੇ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਦੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਹਿਆ, ਆਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨੂ ਲਿਆ। ਜੇ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ। ਲੋਕ ਗਮ ਗਾਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਵਦੀ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਗੋਤ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਠੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬੁਝੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਉਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬਹਿਣ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਦਮੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਂਪਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਵੀਂਗਾ ਪੈਰ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਪ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭਾਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਭੂ ਤਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਗੋਚਰ ਰਹੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਜਰ ਸਹੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਤਨ ਉੱਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਦੜੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੋ ਲੈ ਉਧਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਰ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਕ ਤਾਰੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹਾਂ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਸ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਅਮਾਰੀ।
साध के संग मिटे सबर हो नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता बखयाने साध की उम्मा ते गुण ते दूर साध की उम्मा रे भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊची साध की शोभा मूझते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक सबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोग जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के देश समान जैसे राज लंको लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक जो सुधा को खोदे को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाव नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे महल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगाध जैसे तारे ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मिश्र सदृ समान ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सुबल भला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम हजार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ पागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन वाहे ब्रह्म ज्ञानी का गुण जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कसिया ना जाहे अदाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब शिष्य का करता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव है नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमुख निमुख ठाकर नमस्कार है नानक को अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिसिया नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श प्रत रूप न पेखे नेत्र साध की टहल सन संग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखे अपर हरे मन की बास न मन ते ठरे इंद्री जित पई दोग ते रह नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे नहीं कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत कीर्तन संग राचा है मन तन अंतर सिमरन गोपाल सभी ऊपर होवत कृपाल आप जड़े अवरा नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग
सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन से सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल गोवे तिस पूरि मल उत्तम होवे भगवंत की टहल करे निज नीज मंथन अर्पे विष्णु परीज हर के चरण हृदय बरसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जाग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वे प्राण से मत बूझे मूल।

बिलावल मल्ला पहनवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जान पर ताका साध परताप, राखन हार अपार प्रभ ताके निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर की ने गुरुदेव रहाओ, सदा हरा त्याई एक बिन न लाग गए, नानक नाम सलाई है पै दुश्मन पा गए, बिलावल मल्ला पंजवा, मन तन प्राभे आराधी है मिल साध समागै, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पागै, राम नाम जो जन जपै अंदन सद जागै, तंत मंत न जो ही तिर चाहन लागे रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै, बिलावल मल्ला पंजवा, जी जोत वा प्रभु कह जो कह सो करना, पै सो प्रसन्न गो पै प्रसन्न गोपाल राय, पौ किसो नहीं करना, दोखन लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे, जम कंकर नेर ना आवे गुरसिख प्यारे राहो, कण कण सम्राट है ते बिन नहीं होर, नान प्रा शरणागति सच अमन जोर, बिलावल मल्ला पंजवा, सिमर सिमर प्रभे अपना नाता दुख नाठा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साध संग ताते बौड़ न ताओ, बलारी गुरे अपने चरण बल जाओ, नाथ सो मंगल कबन है पेगत गुण गाओ रहाओ, कथा कीर्तन राग नाद तुन ए बनो सुहाओ, नान प्रासो प्रसन्न पै बांस पल पाओ, बिलावल मल्ला पंजवा, दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखण गो नास, चरण कमल दास राप प्रभुर गुरदास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लाकड़ सार रहाओ, मात पिता बंदव तू है तू सरमदान, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास, मात पिता बंदव तू है सू सर्ब निवास, नानक प्रभु शरणागति जाको निर्मल जास, बिलावल मल्ला पंजवा, सर्ब से दर गाई है सब भला मनावै, सा सा मोहते कह सुरदास मिलावै, सो सह कल्याण रस पूरे गुरदी कीन, सजी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन रहाओ, पूरे हो सरबत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भरत आनंद मैं पे प्रभ की तीर, बिलावल मल्ला पंजवा, अरदास सुनी दतार प्रभ होए कृपाल, राह लिया अपना सेवको मुनंद किशार, तुझे न जो है को मीत जान तू गुर का दास, पार बिन तू राख्या दे अपने आत रहाओ, जीन का दाता एक है थी नहीं होर, जीन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर, बिलावल मल्ला पंजवा, मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृत हो गए तुम हो निचिंद रहाओ, सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सबल जा की सेवा, ऊच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ, बिलावल मल्ला पंजवा, गुरपुरा राधिया हो ए कृपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल, दुख पू संसा मिटिया गावत प्रभ नाम, सैख सूझ आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ, जरन बुझी शीतल पै राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप, बिलावल मल्ला पंजवा, तरत सहावी सफलतान पूर्ण पै काम, पौना ठा परम मिट गया रव्या नित राम, साजना कै संग बसो साहिब राम, साई घड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ, परट पै संसार में फिरते पै नाम,

पढ़ पढ़ कर डील दिए, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड़ी है खा, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आर जा, पढ़ी है जेते सा।

जीवो नाम सुनी जौ सौ प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुनी जीवो नाम सुनी जौ सौ प्रसन्न पै गुरपुरे तब मेरी आस पुनी रहाओ पीर गई बादी मन तीरा मोहयो अनद तुनी उपजयो चाओ

0: अनक भगत अनक जन तारे सिमरह अनक मुनि अंदले टेक निर तन तन पायो प्रभ नानक अनक गुणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम नमस्कार जो सत्संग जी हो सतगुरु जी अपार बख्श रहमत कृपा सिरता अमृत वेले सज दीवान दी हाजरियां भरियां ने नेतनेम अनुसार पाठ उपरंत दाता जीओ दरों करोड़ साहिब गुरमुख प्यारे जथे पासों आप जी ने आज सकी वार देखी तन श्रद्धा पावन ते प्यार दे सरवण करके रास प्राप्त कीता। सरबत दे भले लई आप सरबत संगतां दी चढ़दी कला दी गुरु चरणा विच अरदास बेनती होई है। सतगुरु ने अमृत वेले दरबार विच सिंघासन ते विराजमान समझो लाही फरमान मुख वाक पे तुर्कमना में बख्शे श्रवण कीते गए बने प्रोग्राम सारे स्पावन मुखवाद की कथा विचार भाई सपाई गुरयानी गुरशरन सिंह जी आप श्रम करोगे। उस तो पहला बेनती है कि आनंद कार्य वास्ते जो गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे एक वर्कशॉप रखी गई है उन्होंने बच्चों लिए उन्होंने पेरेंट्स लिए जिन्होंने अपने बच्चों के आनंद कार्य करने तो जिन्होंने बच्चों ने आनंद कार्य कराने ने उन्होंने बेनती है कि आप जरूर आनंद कार्ज वाले बारे पूर्ण जानकारी देने वास्ते 31 तरीक न एतवार को इतने शाम को वर्कशॉप होगी जिस वे बेनती कर रहे हैं उन्होंने बच्चों जिन्हों बच्चों ने गृहस्थी जीवन में प्रवेश होना जो बच्चे गृहस्थी जीवन में प्रवेश हो चुके हैं उन्होंने वास्ते भी ये जिहड़ी चीज़ है बहुत चंगी है और कोशिश करो कि आप इन्हें जरूर अटेंड करने का यतन करिए ता कि जो सिखी सिद्धांत अनुसार जो गुरमत अनुसार आनंद कार्ज है वो आप किवें करना की है यदा मुख सिद्धांत की है तो गुरु महाराज की बख्शे द्वारा ये कि बख्शियां साढ़े ते सानू प्राप्त होंदियां ते की इन्हां विच वाधू साढ़े च आ चुका इन्हां चीज़ां की जानकारी देने लिए आप दे नाले सांझ करनी है। सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब श्री विखे ये उपराला किया गया सो सब नूं बेनती है इस वे जरूर हाजरी बने। एक बेनती सामने ट्रैफिक की है कि लाइटा इधरले गेट तो लथ के दूसरे गेट पर लग चुकी ने कोई भी प्राणी इतों सामने हो गेट तो रोड क्रॉस करने की कृपालता न करे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मुश्किल होगी। आओ हम सरवण करिए अज के मुखवाद की कथा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम

जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहिथ अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरुदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरां दी अमृतमई बाणी आसा की वार दे कीर्तन गुरु करके रागी सिंघां पासों श्रवण कर रहे सी। तो साध संगत समा है मुबारक बाणी दी विचार दा, गुरु चरणा विच अरदास करके भाई साहब जी ने जो

प्यारी सत्संग जी, गुरु की इलाही बाणी दा कीर्तन करदे आ। तू अनेकां ही प्रकार दीआं फुल्लां हो गईआं होणगीआं, साध संगत बख्शन हार है। गुरु गरीब नाथ पातशाह धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शन हार हन। बख्श लैणा जी, आउण वाले समें च वी अरदास करिओ, आप जी की सेवा करते रहिए, आप जी के दर्शन करते रहिए। हुण बहुत ही सत्कारयोग ढाडी जथा भाई साहब भाई बलवीर सिंह जी बिहारीपुर वाले, आप जी नूं ढाडी वारां अथे गुरमत विचारां दे नाल निहाल करनगे। सो आओ उन्हां दे जथे पासों आपां ढाडी वारां अथे गुर इतिहास दी विचार सरवण करिए जी। इत्थे समें दी समाप्ति बुलाओ, फतेह असीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

सबो दुख गवाए जियो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

तुम्हारा जियो। तू सच्चा साहु भगत बन जारा जियो, हर तन रा सच बपारा जियो, जन नानक सत बलिहारा जियो। राग गौड़ी मांझ महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तू मेरा बहुमान करते, तू मेरा बहुमान जो तुम्हारे सुख सां सशुद निशान रहा। सबे गला जातियां सुन के चुप कियां, कदी सुरत ना लदियां माया मुहिड़िया। देव जारत सारता से अखी डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी के आ।

गुरु नारायण दे गुरु गुरुदत्त जनहार गुरु दुटे सब कि पाया जन नानक सत बलियार गौड़ी मांझ महला पंजवा हर राम राम राम रामा जब पूर्ण होए काम रहाओ राम गोविंद जपंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जेते सोई भाई मित्र।

चेत पाते डरे। दीनदयाल सगृह भंजन शरणताय तुम परे रहा। भेद प्राण जात गुण गावत ताको नाम ही है मोह धरे। पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमर सब हर रे।

लागुपाई भगत करी राज मिथे सिखिया दिखिया भोजन पाऊ हुक्म संजोगी निज कर गाऊ।

जैसा करबार सो तैसा, विष्णु गोपा मैया को कैसा, सागर डुगो निरफो ऐसा, मोए को मारे कौन, निड्रे को कैसा डर कौन, शत पछाणे तीने पौन, जिनके आ दिन कैन बखाने आ, जिन बुझया दिन सहज पछाने आ, देख विचार मेरा मन मानने आ, कहत सत मगत के नाही, ते निरंजर समाई।

दास गौड़ी मोहला पहला भर में गर्व किया नहीं जाने आ वेद की विपत पड़ी पहचाने आ।

विकारी। पातमत खुवे नाम सारी, पर कर जीत मन गडुलाए, गल जीवरी धंधे लुटाए। गुरमुख जुड़स हर गुण गाए, ज्यों तन विधवा प्रकुदी।

चुआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम दूर नाम बिसरे नाम बिसारे ऐसो कूड़ो कूर निजे वाजे तख्त सलाम अपनी तृष्णा व्यापे काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अकार नाही प्रमिला मन दे पावे नाम सुहिला दूजे पाया ज्ञान सुहिला।

नाई बैन गुर सेवे बहुत दुख भाई नाम रतेसदा बैरागी गिरी अंदर सहज निवलागी नानक सतगुर सेवे सेवड़ भागी गौड़ी महला तीजा।

हृदय मेरा प्रभाया गुरु के शुद्ध सीधय सतगुर मिले ब्रह्म आ मिलाए मेरे प्रसादे के मन पाए हर गुण गावे से सबाई बिन गुरसादे ब्रह्म लाए मन मकान दे सा भिख खाई जम डंड सहसा दुख पाई जमुआ राज हर की शरण आई हमें मार सच लिबलाई सर हर नाम लिबलाई सतगुर देवे से जन मल पेता मन से मन मिलाए सब जग जीता इन बिकल तेरे मेरे मीता सतगुर देवे सो बल पाए हृदय नाम विचों अगवाई अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर दे कवन कवन ना सीधो मेरे पाए भगती सीधे दरसो बाई

दास ग्रह कुटुंब दाव दास जीवन मुक्त कर्म कोई अमर पदार्थ पावे सोई त्रैगुण मेटे निर्मल होई सेज साच मिले प्रसोई मोकटों से प्रीत न होई जाहिर देव से आस सोए गर्म गमन पे दया सिरोए गुम पछाने पूजे ससोए तू करता मैं वरना कोई

जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हार पछाता, तब इसको ना ही किस दाता। जब इन अपनो बाध्यो मुहा, आवे जा इसदा जमजूहा। जब इस ते सब भिन से परमा, भीत नाई है पार ब्रह्मा।

जास जबत सुख सहज निवास जातवत अगन्ना पवत जातवत काना ज्योत जातव तेरा निर्मल माता जातो सगला दुख लाता जात मुश्किल कचूना बन जातो तो सुन अनाथ तुन जास जबत हे निर्मल तो ये जात कमल सीता हो गुर सब देठ सुपर करी जिसके हित मंत्र दे हरि अगन कीर्तन दिन भोजन चूरा को नान जे सतगुर पूरा

जोइस मारे तिसको पुनाए, जोइस मारे सो नाम समाए, जोइस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जोइस मारे सो दरगह सीजे, जोइस मारे सो धनवंता, जोइस मारे सो पतवंता, जोइस मारे सोई जति, जोइस मारे तिस होवे गति, जोइस मारे तिसका आया गनी, जोइस मारे सोने चलदानी, जोइस मारे सो उठ पागा, जोइस मारे सो अन दिन जागा।

फिर छोड़ी अड़ी जियो कौन मिलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्द सुहावे तब तो पावे दीपक दे जा रहे।

मनुरा स्त्री का व्यापै जियो रावना की पितनी जानी मात पिता सत भाई खरे प्यारे डूमोए बिन पानी।